0: सोमवार है,
1: है, है।
0: आज सोमवार है,
1: है।
0: तुमको मुझसे प्यार है।
2: Radio 786. Hear the difference.

कमजोर मत होने देना, हमें याद दिलाते रहना कि हमारा रिस्क किसी इंसान के हाथ में नहीं, आपके खजाने में है।

बरकत अता फरमा। या रब, किसी को इतना परेशान मत करना कि वो अपनी जरूरत के लिए गलत रास्ते पर चला जाए। हमें हराम से बचाना, और ऐसी कमाई से बचाना जिसमें आपकी नाराजगी हो। हमें कम

अगर कोई चीज हमारे हक में बेहतर नहीं तो उसके पीछे भागने से बचा लेना, हमारे दिल को अपने फैसले पर राजी कर देना। और अगर हमारी कोई दुआ अभी पूरी नहीं हुई तो हमें मायूस मत होने देना।

0: आमीन।
1: बेशक ये दुआएं मैं आज इसलिए प्ले कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी जनाजे हुए हैं हसीना चिलवान जो 33 साल की थी और उनकी दो तीन छोटी बेटियां हैं, एक जुड़वात 6 साल की और एक 2.5 साल की बेटी। या अल्लाह इनको सब्र दे। और हमारे गफूर साहब, उनकी बहन अजनी साबिरा मोहम्मद हुसैन, वो भी इस दुनिया से चल बसी है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे और इनके दर्जात बुलंद करे जन्नत में। और इस्माइल खलन साहब, ये सब अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह इन मरहूमों की कब्र में नूर डाले, इनकी मगफिरत करे और इनके दर्जात बुलंद करे जन्नत में। देखें, मौत तो बरहक है और जाना सबको है, लेकिन वक्त ऐसे हैं कि खासकर ये हमारी प्यारी हसीना चिलवान, जिनकी छोटी छोटी बच्ची आए, अल्लाह उन पे रहम करे, अल्लाह उनको सब्र दे, ये हमारी दुआ है। और काफ़ी लोग बीमार हैं, तस्लीमा अली मेरी प्यारी दोस्त जो वॉइस ऑफ द केप की प्रेजेंटर भी है, और गुलाम लोगडे साहब जिनकी कल सालगिरह है, या रब इनकी शिफा दे, इन्हें कामिल शिफा दे और इनके हर गुनाह को बख्श दे और इन्हें मुकम्मल शिफा अता कर, ये हमारी दुआ है। तो अगला कलाम भी दुआ है।
2: कभी किसी अपने की परेशानी हमारी अपनी परेशानी से भी बड़ी लगने लगती है, उसकी तकलीफ देखकर दिल बेचैन हो जाता है, लेकिन हम उसके लिए कर भी क्या सकते हैं, बस हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं। या अल्लाह, जिस अपने के लिए आज कोई परेशान है, तू उसकी मदद फरमा। जिसकी आंखों में अपने किसी अजीज की वजह से आंसू है,

या रब, अगर किसी का अपना तुझसे दूर हो गया है तो उसे अपनी तरफ वापस बुला ले। अगर वो गलत रास्ते पर है तो उसे हिदायत दे। अगर वो गुनाहों में फंसा है

बेशक एक नज़र मुझ पे भी सुल्तान मदीने वाले, दोनों आलम के निगहबान मदीने वाले। वजाए तकसीन है आका तेरे नाम नामी, दो जहाँ की है तू ही जान मदीने वाले। मुझ पे भी नज़रे करम दे मेरे दाता, तेरा होकर हूँ परेशान मदीने वाले। देख लूँ मैं भी मदीना एक दिन, बस यही है मेरा अरमान मदीने वाले। मेरी प्यारी दोस्त जो प्रोग्राम सुन रही है, उनका नाम है शायदा, जो कह रही है थरली इंजॉयिंग योर प्रोग्राम एंड अप्रिशिएटिंग द वंडरफुल सिलेक्शंस। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करती हूँ, बस दुआ करें मेरे लिए। और मेरी प्यारी बहन रशीदा धन से भी प्रोग्राम पसंद कर रही, कहती है शी इज़ रियली इंजॉइंग द प्रोग्राम। और फातिमा अपा कह रही है अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह इंजॉइंग द प्रोग्राम, टू मेनी अल्लाह सुबहान ग्रांड सबर इन द हार्ट्स ऑफ द डिसीज फैमिलीज एंड शिफा टू आवर सिक, ग्रांड यू ऑल अ सेफ जर्नी होम, आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर आपकी दुआओं का, आपके हौसला अफजाई का। और अगला कलाम हमने लिया है सरकार की बातें, और ये कलाम हम प्ले कर रहे हैं सदाकत अली साहब की आवाज़ में। सदाकत साबरी साहब जो केप टाउन में आएंगे 20 दिसंबर को परफॉर्म करेंगे, और ये बदौलत होगी इरशाद साहब की। और वो सलाम और दुआ भेज रहे हैं और कह रहे हैं मुबारक फॉर द मंथ ऑफ गौसुल आज़म। तो ये अगला कलाम सरकार की बातें सदाकत साबरी का आवाज़ में।

तो ये थे शब्बीर सदाकत साहब, शब्बीर सदाकत साबरी साहब, जो नैस प्रमोशन की तरफ से इतवार 20 दिसंबर को लाइव आप देखेंगे जोसेफ स्टोन ऑडिटोरियम में। तो ज़रूर आप इनको सपोर्ट करें। अगला कलाम हमने लिया है, सुना है कि बगदाद, मौलाना सालिक की आवाज़ में।

बेशक धूप मिले तो घमंड ना करना। और हम देख रहे हैं आजकल जो जनाजे हो रहे हैं, बहुत ही जवान लोग 30-35 साल के दरमियान, जैसे हमारी प्यारी हसीना चिलवान, जिनका जनाजा बहुत ही गमगीन था क्योंकि वो जवान थी और उसकी छोटी छोटी बेटियां हैं 6 साल की और 2.5 साल की। अल्लाह, मैं कहती हूँ इनके फैमिली को सब्र दे और इनके बच्चों को बहुत सब्र दे। और मेरी ये इत्तिजा है आप लोगों से कि अपने परिवार, अपने भाई बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के रहे, जो भी गिले शिकवे हैं उन्हें मिटा दें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। और देखिए हमारे पहले बुज़ुर्ग कैसे रहा करते थे 50 साल पहले। तो ये अगला कलाम 50 साल पहले।

रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत पे घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। साकी से गिला था तुम्हें, साकी से गिला था तुम्हें, मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई।

माजरत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। ये थे जाने वो लोग कैसे, सुभोजीत की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत कलाम। और ये जाने वो कैसे थे जिन्होंने मतलब के लिए अपने मतलब के काम करके लोगों को पहचानना छोड़ दिया। लेकिन पहले के लोगों में ऐसा नहीं था, तो ये 50 साल पहले लोग कैसे रहते थे प्यार से और इत्तेफाक से। तो अगला कलाम यही है, 50 साल पहले।

बेशक बहुत ही खूबसूरत कलाम। 50 साल पहले, 50 साल पहले जो इत्तेफाकी और मोहब्बत रिश्तों में थी वो आज नहीं है, और ये बहुत ही दुख की बात है। सैड द वे वी लिविंग इन टुडेज टाइम एंड ट्राई टू कीप योर बॉन्ड्स एंड फैमिली टाइज एंड रिलेशंस विद योर नेबर्स। बस जिंदगी क्योंकि बहुत छोटी है और आजकल आप देख रहे हैं बहुत ही अचानक हो गई है ज़िंदगी, और हम यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे ज़िंदगियों में खुशियाँ और आफियत रखे। प्रोग्राम के समाप्ति का वक्त हो चुका है। मैं तहे दिल से टेक्नीशियन हमारे शब्बीर साहब जो बहुत मेहनत करते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और आप हमारे सुनने वाले आपकी दुआएँ और आपकी हौसला अफजाई काबिल तारीफ है। हमारे लिए दुआ करते रहिए और हमारे रेडियो स्टेशन के लिए भी, रेडियो 7600.4 पर आप हमारे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। इसके बाद आप सुनेंगे मेरे पंख क्या टूटे, फिर पीरान पीर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, मुद्दतो प्रतिभा सहगल की आवाज़ में, मतलब कि दिन उबैस मुरादी की आवाज़ में, और शब्बीर सदाकत की आवाज़ में मेरे सरकार नबी, और फिर सलामी होगी आका ले लो सलाम। इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो हम फिर मिलेंगे। फी अमानिल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर।

0: कैसे बुजहल को आका आते नजर, पहरेदारों का पहरा था जब गार पर, वो पहरेदार कौन था?
1: वो पहरेदार कौन था? पहरेदारों का पहरा था जब गार पर। अल्लाह ने हिफाजत किस तरह फरमाई अपने महबूब की,

आ गई एक मकड़ी मचलते हुए और जाला बनाना शुरू कर दिया। तवज्जो जाऊंगा हजरत सामने जो बैठे हैं, खाली तवज्जो से सुन लेंगे तो समझूंगा कि मेरा प्रोग्राम सक्सेस हो गया, शेर दिल में बैठ गया था। अब शान इस शेर में बयां हो रही है नबी पाक की पाक बेटी सैयदाए कायनात फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। शान देखिएगा, जबकि मकसूद कायनात है, इख्तियारे कुल तमाम हाथ में है, मगर फिर भी चक्की चला रही है। इस सादगी पे कुर्बान जाए, आज भी चक्की चल रही है, क्योंकि ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। अब चक्की चल रही है और फातिमतुज़ ज़हरा याद मौला में खो गई है। मुलाज़ा फरमाइए।

बहुत शुक्रगुजार हूं। तवज्जो चाहूंगा जनाब, जितने सामने बैठे सुन लें, चक्की जल रही है।